0: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुह प्रसाद सवाइये करेंगे।
1: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
2: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
0: आओ अनंत साहिब करिए,
1: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
2: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
0: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
1: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन, मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हाँ।
2: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीर हन।
0: ओ वेको गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
1: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लगदिया हन।
2: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी।
0: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
1: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
2: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।

0: बिना किसी चिंता तो आराम नाल सुती। ओस नू पता सी कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जावेगा। अगले दिन पूरा परिवार अपने बगीचे विच कुछ बहुत वड्डे रुख उगे देख के बड़ा हैरान होया।
1: है, एकी ए रुख कितों आ गए?
2: हे वाहे गुरु की ए वही बीज ने जो असी बीजे सन।
0: ए चमत्कार सी, रातो रात रुख किमे उग सकदे हन?
1: ए नहीं हो सकता, असी कल ही ताजे बीज बीजे सन।
2: वाह, ए ता गुरु जी दा आशीर्वाद है।
0: ए खबर अग दी तरह हर पासे फैल गई अते जल्द ही सिमरन दे कार नू टीवी दे पत्रकारा ने चारे पासों घेर लिया। सिमरन टीवी ते सी अते रिपोर्टरा नाल गल करके पूरी दुनिया नू इस बेहतरीन कहानी बारे दस रही सी।
3: सिमरन जी, तुसी ए दसो कि तुसी उना लोका नू की कहना चाहोगे जो इस गल ते शक करदे हन कि ए रुख रातो रात नहीं उगे?
2: इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसी मेरे ते विश्वास करदे हो जां नहीं। एक बार जदों असी सच देख लवांगे ते सारियां समस्यावां अपने आप हल हो जाणगियां। इस विच असी सारे इकट्ठे हां, सारे लोग, जानवर अते पौधे, धरती दा हरेक जीव अते इकट्ठे मिलके असी एक सुनहरा भविख सिर जांगे। सानू भाई कन्हैया जी नू अपना आदर्श वजो देखना चाहिदा है।
0: तां दुनिया दे हरेक कोने विच लोकां ने खुद इस नू अजमाया। उन्हां ने भाई कन्हैया जी नूं याद कीता अते वख-वख थावां ते बीज बीजने शुरू कीते, पर ए चमत्कार आउण वाले हालातां दा इक छोटा जिहा हिस्सा ही सी। सिमरन वल्लों शुरुआत विच बीजे गए रुखां दे खास बीज मिट्टी अते पानी राहीं होर रुखां नाल जुड़ गए। उन्हां दीआं जड़ां इक दूजे तक पुज गईआं अते जल्द ही दुनिया भर विच संघणे जंगल उगणे शुरू हो गए।
4: As भाई कन्हैया sees एक ओंकार, So do I see the one and all. Dhan Wahe Guru.
5: Jiddaan Pai Kanhaiya Ji, Samjan Ek Onkar, Ohi Nazar Naal Dekha Main, Saryan Nu Iksar.
6: Zheng Ru Pai Kanhaiya Kan Dao Ek Onkar Yang, Wai Kan Dao Liban, Dhan Wahe Guru.
7: Como Pai Kanhaiya Vea Ek Onkar, Yo También Veo Al Uno En Todos, Dhan Wahe Guru.
8: Como Pai Kanhaiya Buat Ek Onkar, Yo Veo Si Leun En Tu,
0: दुनिया भर विच लोकां वल्लों कीते जा रहे सिमरन दी संयुक्त शक्ति दे नाल एह खास बीज जल्द ही उग गए अते बंजर जमीनां भी खूबसूरत संघणे जंगलां विच तब्दील हो गईआं। एक महीने दे समय अंदर सिमरन बाहर गई अते उस ने एक बेहतरीन नजारा देखिया। उस ने अपने उपर आकाश विच दर्जना ही काले बदल वेखे। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
2: ਰੁੱਖ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
0: ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ।
2: ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
0: ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਉੱਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
9: ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਨੈਟ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।